0: श्री लांकी रिद्मय विश्वे सिसारा लाइव एफएम
1: लाइव एफएम डॉट एलके

एकुलहाई दैंग विलाब रुहुनट रजरटट सिंकडगलट www.livefm.lk Live FM.